0: काटेर बाइक छ्यामिची हाल्दल खप्पर मि काट नौ म खट्टारे बाइक फेरि नुङजी खप्पर स्टार्ट आदनी
1: लोद्रे चियाको थोरै चियाको अगाडि जङ्गा उर्खा मौजा
0: जे बच्छा मेलाम फेन बास्न गए
1: है अनि इसार ल
0: हाल सुगर ड्याडी छु है

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए म चाहिँ

0: இளம்பு பிரேக் டைம். शिशु तथा बालबालिकालाई अत्याधिक गर्मीबाट जोगाउन, बालबालिकालाई दिउँसोको चर्को घामबाट टाढा राखौं, उनीहरूलाई हलुका र खुकुलो कपडा लगाइदिऊ, गर्मीबाट बचाऊ।
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र।

Telembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Elambu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो परमेश्वर फिरिला रंगला भरोसासी रंगला जहान आशिष यंगला जयमसी तथा लसो फ्याफुल्ला नमस्कार स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी समक बसुगो अंक 33 श्री रंगनिदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिनी ङ राङदा ज्ञानबरी सिमुलकी रङला लुइरी राङला प्रिय जनगदेला लुइदा प्रभाव सोसिला ज्ञान सम्भावना मुला कि राङदा थामुला रोसी प्रतिज्ञा लस्युवा कि जब रङ रोल आवाज डन्सुमुला खेन्दे रङला लागरी रोला योजना पालन लस्युमुला रोसी राङला जहाँदा विशेष आशिष पिन्सुमुला चु रङिदा नला प्रश्न उत्पत्ति 12 अध्याय 1 परमेश्वर से अब्राहम दा सुंजी एला लुई देन एला कुटुम्ब देन एला आवाला दिन ज्ञान
2: टाइम चेक इट्स 7 PM
3: अहिले साँझको 7 बजेको छ।